0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

छनी मुसाफर रेणु रे जी जदने रो। अरे माता रोवरे बारो मास भेनो रोवरे छठी समास तन की तरिया तीन दिन रोवा फेर कर रे घरवास।

0: मारो भाई बंद को तो वाड़ा, तारो कोई छेनी रे भड़ा, तारे डीले प्रेरो खींच लिए कपड़ा।
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा, दारो चुड़को मार ब्यान जल्दी पाड़ा, कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा।
1: बोल भाई।
0: होटो आनान क्या मोटो, पीला कांटो काड़ा, पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: जन्मे माता ने ये मानव घनो मोटो छ एक किमत घन जबरदस्त
1: घन मोट छ
0: अरे कहने का कह दिया कित्ता बजाऊं रे ढोल एक सुवास तीनी ताले रोमोट
1: खरोच खर्चा
0: ये मानव छ जो पशु का अपनिया हो नर का कुतना हो अरे नर ने करनी के नर रो नारायण वो
1: खरोच खर्चा
0: नर रो नारायण रो अपने हाथे में छ
1: खरोच
0: सरगेन जारो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: नर के पड़े रो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: मां भेने काकी दादी केताने शाबाश के रो अपने हाथे में छ
1: अरे भाई वाह
0: आनी ओळो सोळो बोलन मार खान ढोळो सबेन गटारी कर पड़े रो अपने हाथे में छ
1: वाह भाई वाह रे
0: सेवा।

0: कानी हाँ। लेने को हरी नाम हाँ देने को अन्नदान चलने को निनता डूबने को विमान
1: बोल भाई बोल
0: जेन डूबदार से तुको मक्कार सरना करो थट रण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु
1: देख रे भैया
0: जेने तुको नानक्यापनो लेन जेने तुकारा महाराज कहो छ नानपन देगा देवा।

0: क्यों छ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभी कर ले। अच्छी बातें सुध को आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो। प्रभु रामचंद्र भगवान रावण मारन पार दिनो, लक्ष्मण ने मिलो। अरे लक्ष्मण राजनीति कू चलानू रे, तो लक्ष्मण ने तो को रावण क्यों, अरे सवार करो रो, आज कर लन, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो, आची व्याते वेर भी तो आज कर लो। पानी रंग बांध रे पाल, मरे रंग जिंगल रे काल, तारो डूबे रंग कतुई ढाल, तारो बाप बेटो अंग मोटो काल। अरे झल्ली जरा मत कर रे, हा हा

0: जगे न जो काल खादा छ अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर छ
1: खरोच
0: खरण के ताणी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम प्रभु राम रघुवीर रो नाम माता पिता सेवा अरे जगेर माई कूद चाणनु ये जलमे माताणी मरजो रे मरजो पण जरा कीर्ति रूप वरजो मरजो पण कीर्ति कर दो

0: अरे इंद्र पड़गे भग चंद्र वेगो काळो नारद चुगो अरे नार चुगो भजनेरो चाळो
1: हाँ।
0: अरे 60,000 वर्ष विश्वामित्र कीदो उतो तप
1: बरोबर
0: अरे एकच बाई आई ओरकन विद्या वेगी गप
1: हाँ।
0: अरे भस्मासुर मौनीर सो बजान बळन वेगो खाक
1: वाह भाई वाह।

0: चरे भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने शरीरन का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आवरो छ डॉक्टर को नाड़ी तपासन जुठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप चढ़गो छ रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़गो तो तू डगर जाई छी
1: खरोस कर
0: डगर जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जारो चारनार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहेब 1000 रुपया दे दे
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: खरोस कर
0: आनी तू को पथपाल खाटो खरो मत खोग के दिनो ठीक सर के तानी 1000 रुपया दे आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी जो हांडी वड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी वड़ा मुंडो को वेगो जो को वेगो ढगर को
1: हाँ।
0: ढगर को तो कहती केवड़ी व्यापारन को नहीं गयो
1: हाँ।
0: सारी ताने खड़ी कराना को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले।

0: बाइके मिले छ।
1: आ
0: अरे भगवाने सौंदारो पत कुंसो छ
1: कुंसो छ
0: डाक्टर गनेरो पति वेगो खटो खरो न खदो तो ताप लग जा छ।
1: हाँ
0: डाक्टर सौंदार ज्ञानी श्री भागवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबा रो गाता नौनाथ वास्ताने मारे गोपाल कृष्ण रे 84 तोरे र अरे पायरी कर बेसे र तो पत कुंसो छ
1: कुंसो छ।
0: अरे आपरे घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी।
1: हाँ
0: अरे दूसरे घरेरी सिरापुरी छरखा केरी।
1: हाँ
0: अरे आपरे घरेर मांद सुंदर नारा तने लागिरे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो।
1: हाँ।
0: जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्रादुन कांटो।
1: हाँ।
0: अरे तोला उंदार कलियर बेटा नपन तोटो।

0: मोड़ सा
1: हाँ।
0: कबीरदास महाराज के मोड़ सा
1: हाँ।
0: अरे कहने का कह दिया किता बजाऊ ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुहास्तिनी तालाऊ का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरे मालकण के दी पानी इंदर की
1: हाँ।
0: तो पानी की जन वो तो कोई दी भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है
1: हाँ।
0: तो तू काई करे ची
1: हाँ।
0: मार मालकण जी कोई तो बोल रो सा
1: हाँ।
0: घर कुराड़ी आलाई ची वो ना मैं थार करू कर के
1: खरो खार।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल रहे पर तुझको पेटे में कंपला लाई ची
1: हाँ।
0: बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची
1: हाँ।
0: तो ना लात छूटे नी। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी
1: हाँ।
0: गरीब माल कर शेर भोजाई लागत है क्यों। मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा ना लोग मारी भी मालक ने जबरदस्त भेड़ गो वरोई काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा शर्म नहीं आए। आपन मालक ने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर का तो नान किस काय बेटा। अरे कीड़ी थी परमदेव इतनी इज्जत सारक छ कारण केन काय।

0: साइकिल बनाना चाहे माटी, अरे दोपहर माटी दोपहर तो नहीं माटी दोपहर तो छोड़ दिनो काटी।
1: वाह भाई वाह रे।
0: अरे ढूंढ ली दो दारूर भट्टी, पीले चने अंधारी खान खरदनान तोना को तट्टी, मालकन हेटे दी उठी भारान दीटी, तो मार भ्या धोती घोड़े तुनी छूटी, मालकन तो देखता नहीं बरकान धाटी।

0: ਖਾਵਾਂ ਖਾਵਾਂ ਰੇ ਗੁਰ ਮਾਟੀ, ਬਲਦੇ ਪਰੀਆਂ ਸਕਰੇਰੀ ਗੂਣੀ, ਬਲਦ ਕੜਵੀਰੋ ਧਣੀ, ਅਰੇ ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲ ਕਾੜੇ ਚ ਬਲਦੇ ਨਾ ਮਾਲਮ ਛੇਨੀ।
1: ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਰੇ।
0: ਅਰੇ ਸੜਕ ਖੋਜੋ ਗੁਰ ਮਾਟੀ, ਸਾਡਾ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਮਾਟੀ, ਭਾਟਾ ਫੋੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਮਾਟੀ, ਵਾਵੜੀ ਫੋੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਮਾਟੀ, ਆਨੀ ਖੋੜੀ ਤੇ ਖਾਉਤ ਰੇ ਬਾਟੀ। अरे अतरी अक्कल का छेनी तुम्हारे माई, एक जरस मोती वालो क्योंको सेवा लाल कबीरदास महाराज क्योंको छ। अरे सिंधी दारू मत पियो यारो, अक्कल गुम हो जाती है, पलू का पैसा निकल जाके सिर्फ मुंह में मट्टी आती है, रंडी बाजी मत कर यारो, अक्कल गुम हो जाती है, पलू का पैसा निकल जाके सिर पर जूता आता है, जुगाड़बाजी मत खेल यारो, अक्कल गुम हो जाती है, पलू का पैसा निकल जाके बगल में झोली आती है। ये रे सारू ये जलमा अपने घड़ी घड़ी मड़े वालों कावा, अरे भाजी पालो कावा, ज्यादा धारण खेते में फेलने वते मोड़ उठे सारू, ये रे सारू ये काई करे,

0: अरे परपंच कर रे नेट का कति मत दकाद रे फाटका कामे माई काम हरी नाम रो गुटका पर हरी नाम रो गुटका छेनी रे
1: हाँ रे
0: कति तो ही दाता ने हाट अंदर के दो ही जोड़ा वाड़ा
1: हाँ।
0: तो काई करे छ मालखने अंदर से हाट करे ना आठ और हरोगार भया भान लेता से साठ वो मालकन काय करे रे 8 रुपया में काय हाट करे गी बागवाने कन क तो दादा ये वेंगन कतरा ना वो बागवान के जाड़ी 1 रुपया ना तो उपड़े नी उतरा पाले जो बिचारी वो काने वेंगन रस 1 रुपया में पाला होत और प्रेसी गी कन क तो काले भूर केला रस दादा ई कु याड़ी बारना ना तो उपड़वत
1: देख रे भैया
0: घरे ले आओ छ बेड बड़ा धासना आओ छ याड़ी मार याड़ी आई मर माता आई छोना गज गटड़ी छचारे ने केला दस वो छचार पड़े बदन छोलन खाएं देख छो छोड़े रांगा का केला को गटड़ी न वाला छ मुंडे साव घालेन के तो खार एकड़ी दादा ऊपर ती सड़े का मातो दास बारनार केला खाई छी खराई छी निर्लजम सदा सुखी 8 रुपया हाट कराई छी 60 रुपया रो दारू फे छी निर्लजम सदा सुखी छी तू अरे तो न मानस करो तो अक्कल छे नी ढोर करो तो लार पुतरो छे नी ई जलमा अपनो सेवटावळो काव काय

0: आइटम कहीं लावा ये छटाई तेल लाओ जन आर दार खानो। अरे नीलगाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल आया कनक एक धोवो तेल हांडी में हलाऊंगा ना के। अरे कालो भूर पानी खोरे गुलाबेर फूले ना तार बेले बेट बेट बता रही है
1: खरोच खा
0: मालकन गुलाबेर फूले ना ही रही है तारे ऊपर कर्ज कोनी व। अरे जोजार गले माय मंगलसूत्र भान मेलो चीज लाज छूटनु लागी है तो ना। अरे कांदी सोने दागिना गले में घाल द मालकन चम चम चम की तो तारो भगवान कल्याण करिए। अरे हिजड़ा रावला दूसरे तांडरी साउंड देखन बार शब्द दियाई छी घरेर मालकनर भूखे मारे छी तार सुगो पापी जगेम छेनी।

एक छटाक तेले माई मावली काई करे रे भा नू करता ने ऊंदा एन की तो एक न दी बूंद पड़ते खमत यारी शेज पड़ गए छोरा र कावली माई दीज बूंदेर माई हेड भगला तपरच फक्को वचक जात छ हरोगार पानी खान सत्तो पड़ रे छी अन एक दारू तो छूटे नी तू मानस का अरे लार देख साधु संत काई कर गए मोती वालो सदा क्यों को छ कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सावता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संसुकुबाई चोका मेला सजन कसाई निवर्ती ज्ञानदेव सो पान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोजा सामान नरहरी सोनार गाड़ गए बाबा कैकारी बाबा सुदगुरु स्वामी नामानंद बाबा नामदेव कीर्तन करी पुड़े नाचरे पांडुरंग हरी नाचता नाचता गलाला पितामर कबीर मने देवा पितामर आवर मुनेर मुके मायरो बोल छ अरे तू सामलोग तो तारो कल्याण वे जाए थोर संताचा महिमा आले।

नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे, भगवान एक नाम ले लो रे, भगवान रा भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे कहीं पड़े नहीं रे, कहीं कम पड़े नहीं रे तुम्हारे जिंदगानी ना।

0: अबा तू केस अरे माटी रोज गीत गायो बाहर को नहीं गीत गायो बाहर तो को मैंने बुड़का बसा रेर सा अरे सामल कान भरन बाई कुछ को कहीं लागत सा
1: रोज खर्चा।

0: सेवा की दिरे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चलनाए सता। अरे कलियुग मां बनना की गीता
1: वा भाई।
0: अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भर नितो सत वाले जाऊ तार
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देव रो चरण रो पानी लाई तीनी देव पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीन हाथ तीन हुंडा धारण माता पाने घर हलाई।

0: माता तार पेटे माते निकन तार थट्टा कोनी करू ए वेद पुराणे में से वाते सिसु को तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी तारो देव स्वर्गे में छेनी तारो देव पाताले में छेनी तारो देव पूजी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो

माता अनुसुया माता काई की दी थी अनुसुया माता कौन से देवी नाम धोखी थी गई लगाड़ दे उदबिन उधे उधे उधे की दी थी कीर्तने बसने नान पे सोचो जो गिरजा साईत्रानी लक्ष्मी ये तीनी बेटी थी वो ते नारद स्वामी सवारी जा रही थी। नारद स्वामी ने पूछी नारद स्वामी ये जगेर माई बाई हमें मोटी कोई छगाई पर नारद स्वामी ने आता खेल तो कत्ता अंगार घर दानो बुनी मेरी माई पक्को मालूम तो के गो ए वेंडियो अनुसया माता छे महोर गडेर माई वो ढाई टांगर कीमत तमार तीनीर कीमत ये के गो भाई ने धक पड़गी भाई हांडी उड़ोड़ा मुंडा कन बेच की कौन गिरजा साईत्रान लक्ष्मी ये केरी मालखने ब्रह्मा विष्णु महादेवरी मालखने ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनी तीन काम कर ब्रह्मा देव कीड़ी थी ब्रह्मा देव तुम रक्षण कर कीड़ी थी ब्रह्मा देव तुम्हें जो जीवदान दस सेना रक्षण करो कटे पर हाथ देने वीटे पर हो रो सप्त पाताल आगात ब्रह्मांड चलावाड़ो कीड़ी थी ब्रह्मा देव रक्षण करे वालो जली थली काठी पाषाने मरिया मारो गोपाल कृष्ण रक्षण कर भगवान शंकर फात कर ये तीनी तीन काम करता नहीं आओगे तो ये तीनी मुड़ा चढ़ रहे काय कला तुम्हार मुड़ा केवड़ी चढ़ रहे साल नू देख कैसे सारू चढ़ रहे तो काता वचन दो एल वचन काय वेगो नार स्वामी आया तो वन हम पूछी हम देवे घरेरी बाई सा मानव लोकुर में हमें तो कोई मोटी से काई कतिर अनुसुया माता को छगत मानव लोकुरे माई मर्तवी देशेर माई वो बाई रो सत्वा लाओ जेरे पछ बाटी पानी तुमने ठीक का हरकत छे नी अरे बाईरी बातें सांभो सांभ सभी का हरकत छे नी सांभो घरेर माई मत

0: सेवकना कांदे पान नाच को रे जन्म देवाली माता तो
1: अनुसुया
0: माता कुणसी देवेंद हो
1: की
0: ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाईरी बातें सामने आए तो वो रो तो बरोबर करस कू फेरस बाई बाईर आरे मारो माटी को तो बाईर कू फेरस बाई लोग देवे मारसे ना दोरी फिरवी ते भौरियाला दोरी फिरवी ते भौरियाला बाई

0: बाईने डिलेम देवा आवच हा बाईने डिलेम देवा रायत भगत भी खेलचन वोई खेलच ठीक छ
1: करो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखू आवरे भा सरपंचर बाई रायनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाई डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काल काबर वेरा आठ दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया च फसायव छ बाई जुको काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो वो काई की दो बाई डिलेम तो देव आरोस को लागो 550 रुपया कड़े में खसोड़ मिली छ उतरा पीसी काली दो को तो कला बाई काई कहे वालो छ हां हां के देता नहीं कन बैठो तो छोरा खाएंगे तो घाल देनो पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो बाई काई कच गब्बे स्टोन डाकने खाता गब्बे स्टोन मरिया मा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़ेगे तो गब्बे डणो पण लबाड़ छ माया बड़ी कटूर छ काट कली दो खावत छ अरे हकीम बिचारो कतकत दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुलचुतो ने
1: का का
0: हजार सूर्या भड़तानी
1: हाँ
0: वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हाँ
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आउडी बिली देवी तारमाई कुं घुस जाती है लबाड़ लबाड़ लबाड़ माटियांग हुबो तो ये छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने कहें कसरे
1: हाँ
0: करीना वो कहें कला को मार माल कर मन बला री श्रे राम आयो यारी मद्दी करूं से ये कचवच साटा खोदूं ये कचवच धूड़ पाड़ूं ये कचवच मनद्दी करे यारी या करो हाँ। बेटा तारो बरो बर करो बेटा तारो कल्याण करो बेटा तो डबल उन्हों बेटा वाया की दे जना ये माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की देना सात फेरा भरना यरो माटी हो अब ये डीलर माई आओगे जना ये तो गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाइजर वेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता को भुकम ये को तुगो टेम आओगे सा वो रे सारू तुगो भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरासी चुका लो।

0: माटीर बाहर वा सामने कुण आओगे ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घर आओगे अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अतिथा मुड़बर द्यावे मागे पुरे पहुन का तुकारा महाराज के गोच करण केताने भिक्षा भरला की याडी नूलानी कुल्या वाचो ढुंगळी भिक्षा तार मायर कोठी में जी हुई जुगाल ठीक से गे माई पतिदेव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी की काय के लागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय केरे छ भुंगळी भिक्षा घाल केरे छ ऊ के लागो तारे माई वत चमत्कार तो करेन लगा नमस्कार म काय केरालो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाटी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़न बसार देनी पगे पर मातो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी तीन ही देर पर पानी मार देनी तीनी देवर आवड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे में हुंडा झला देनी पालनो हराती बेस की केर जरे पर बेटी है वेंडी डीले में आए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर मातो पटकले छी माटी कौन बोले छी माटी थी तो सुधो बोले मुंडो भरन बोल माटी ने धुनी धोकचन एवड़ी तू माटी कौन बोले छ धोड़ से मुंडेरा हरेगार जाबड़ेरा मुरियामा खाईनी याड़ी पाड़ेनी हिरण काई मारसा मुड़ो फिर जनीवी है काई सारी तांडे लान ये नगाल दू काई सारी तांडे लान खाल दू के चिन धुनी पर मातो पटके ची धुनी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने रमाई जर मीना बरो सुती तो नियाड़ी साई वे ने करन के भाई

सेवा की दिरे संडलिया माता। अरे तीन दार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीन दार थमाई।

0: छोरी बैठी मायरी आंतरे भार दखाणु तलवारे धार वरो मालक कसोते वेंडी
1: कसो वेतो
0: गोड़े ती टांगे छनी कुड़ी ती हाथ छनी केला पासरो जो कोड्यालो रे कोड्यालो वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काय करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना हे कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक काळो रो आंधो रो लंगडो रो खुळो रो मारे नसीबे मसकन के काय करे ओळडी बसार ताणी वो कोड्याले उंगळी घाल आणि पाणी छेटी मेल द आणि वो पाणी तीन पसी पिवा असे 12 वर्ष दाडो सेवा केली
1: वाह भाई वाह
0: भारवर सेवा की दे दाड बाटी नालती माई बेटी
1: आणि
0: ही जो को भारवर पति देव बेटो तो वेशा नामेर बाई जो वर गळी माई जारी थी वोने देख ली तो आणि लंगडो काही की दो गप से तो को सो गो मालकन बाटी माटी करता ने सांड लिया भाई आई ऊट पति देव बाटी खो खाऊनी म का खाईसनी का खाऊनी जो को वसंत ये ले वचन देख अपने घरे मुंडा गे जो को मखना ही कोन दियो तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सामन ले जो तद मैं बाटी खाड़ नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे कि नहीं चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुछ तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खरा देनी आर दारे मौलत ले दी आन बाईन धून तानी काली दी आन बाईर घरे मुंडा अगर न मालन था कहीं करे लागू

गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला पर एक दारू भाई काई की दी ये गोपाला गोपाला करे वाला कौन तक के वन पकड़ी दी काय छोरी काई कर रही थी भाई काई कर रही में कुछ है मन वचन द ये लो वचन काई कर रही थी इधर के भाई मारे घरे मुड़ा गए तू गीती के चार दारू गए पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन तू वो भाई साउन लेगी तो ठीक नहीं मैं फांसी खान मर जाऊं करे तो यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बेतो कहीं है जन्म देवाली माता गोरे थी टांगे छेनी कुणी थी हाथ छेनी केवार नहीं पाथरो जेन मारो सोने सिर को क्यों सोने श्री केरी तम भी कहीं करो पगू पड़न कुचू हाथ जोड़न कुचू तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देव कर समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण के तानी वो माटी ने जो वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नहीं तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूना रो छो कूमेलू ऊकेला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आनी टेमे ने फलाना कोडाओ घर तो आज को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डीम घाले तानी भारत जारी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेड़िया छ देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेड़िया छ देव रंगारी 16108 नारी।